0: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दर लक्ती र हटबरा पानी बस्तबेर अस्ति चिमचाम कहाँ र सिक्दाय त सोचो त लट्टी ठिक्कम घर दान दान पानी बर्से टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम डिकुम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालमा बहिया घ्यार जोखिम रहत उहमा र बहिया से बचकला पहिलहाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़ वॉइस ऑफ बर्दिया वॉइस ऑफ बर्दिया

0: 呀阿哟，
1: 我呢八个阿哟对，龙阿哟阿哟问题就特价，
0: 我等你 ，Radio Tiger 阿哟。
2: यो रेडियो टाइगर 79.2 मेगाहर्ज गर्जन सस्नदै बाघ सिंह।